हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: डाकून चैनल दी
1: द रेडियो अमन 88.4 करते पदे पंदे बडे कुल कुल प्रोग्राम नवी तयावरा आओ जयावरा
0: रेडियो अमन 88

रेडियो अमन रबड़ी स्टासु द्वारा स्टासु दफाहे प्रोग्रामों ना नो आवृत्तल महेरवाई रेडियो अमन 88.4 करक नशियात सहर ओबुज नवाहला दशपे धूलत बजुबोरे रेडियो अमन दरुखाना सबाउन खा

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
2: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सब कुछ जोड़ती एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 करक, हर वक्त आपके साथ।

जी बिल्कुल प्रोग्राम के बाद खबर तरह कीजिए प्रोग्राम उसने वाला ठीक तर 6 बजे पर भी जी बिल्कुल मुल्क मुख्तलिफ इलाकों के बारानो चुका सिलसिला था आगा बिल्कुल शुरू था और दिन अलावा करक के हाँ माशाल्लाह डेर जबरदस्त बारानो शो था तूफान शांति वो अब यहाँ जे गर्मा जुकम जोर वगैरह आगा बिल्कुल कम शो नो बिल्कुल सूर्य जेबा मौसम खबी नागैन बाद पता लगी जी

हजुर बिल्कुल सही दिल रुबाहट मेसेज कराई और सब खबर लिखे यही खाना छे। अच्छा जी सॉरी जो देखा बने थे पुण्य छोटे एक डेरा मनना दिल रुबाहट मैसेज के बोले डेरा डेरा मनना दिन अलवा दिल रुबाहट फ्रॉम दाई वाई लखा दू करक्षे गुलशन ता उवी याचे कम जये ओके मैं दिल रुबाहट डेरा डेरा मनना थैंक यू सो मच मैसेज के बोले यो जहान मनना और दादा वेचे हम अश्ना था दा डालाई भी का ना और एक वजीरा था डालाई हलक भी ददी नीम अश्वादा मा का वगुरा माजी कर दे हलक भी ददी वेची नीम अश्वादा जदा ना जक तस्वीर था उसके तो योम उखके तो योमा खजी सही और वेची भाई ठोलो फ्रेंड था मैं सलोम दाई और तो ये जो खफा है मेना शाह जब कैसा ना शुवेला ठीक शाह डेरा मनना और दिन लवर ठोलो दे सलाम मिली दिखने वेची दा मैसेज वगैरह कुछ मिल गा और यही करना चाहिए मोल हटक दा फातमा नादिया और दिन लवा दुनिया वजीर अलीना हटक और रोच हटक हानी टेलर सानी हटक मानो हटक ठोलो दे सलाम मुना वरसल ठीक शाह दौर डेरा मुना दिली के लिए दिखे ना फिर आई रजिस्टर में नटकी जी डेरा डेरा मनना सलाम आई एम हिकमतुल्ला खान फ्रॉम जन टू हेल सलामुना नाइसू डेरा डेरा मन्ना थैंक यू हिकमतुल्ला सलाम भाई सरंग ये जरूरी कर रखना भाई बरुण हो डेर खान वक बरान बा यही कहना चाहिए बरान बा वले न वरीगी तारिक भाई ये पकरक सॉरी दीवन कोई निश्वल वैसे टोल लेसन सलाम टोल लेसन ता सलाम और मिस्री ता मिस्री भाई तहां स्पेशल सलाम डेरा मनना रोहिन यो जहान मनना मैसेज के वाले डेरा डेरा मनना और दिन अलग विजय तारिक व बिजेम दे वजड़ावल अच्छा वेले अला दे खेर वकी पदे माजी घर की अच्छा मारी अरमान मैसेज करे दा अजीम को लेने वजी सलाम टू मिस्जी एंड ऑल फ्रेंड डेरा डेरा मन ना अला दे खेर भी कि तुस वेले जुड़े जी कॉल हाँ शामिल है प्रोग्राम की बिल्कुल कॉल तलतर थी 4092729129212 बिल्कुल कॉल पर शामिल है

0: वो तो मुझे नहीं आता, वो तो अरबी में था, लेकिन बस इतना याद है जो अरबी में है।
1: अच्छा चले चले, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिला वो BGM तो मैं प्ले करता हूँ, ठीक है?
0: हाँ, अपना ध्यान रखिएगा और बस।
1: ओके लाफे, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थी आयशा बनू से।

ओके नलके कुर्बान दे। अच्छा जी बिल्कुल मैसेज कर दिए सलाम एंड वेलकम गुड मौजिगर तारिक खान वजीर पखीर रुगले संग ये शुखु समा मसदो आई एम जन्नत वजीर विद जन्नत वजीर हूं एंड माय स्वीट एंड कीती पीती फ्रेंड आरजे शिफा गुल वजीर। अच्छा तारिकाना दाखो प मौजिगर और परे वाते बिल्कुल बाद दास यार परे वातल कहना बरुमा रोडल ठीक सुना। खजी सही था डेरा मनना थैंक यू सो मच लोया खजर से जन्नत वजीर मैसेज के वाले डेरा डेरा मनना वह चार जी शिफा गुल हदर सदा नौ शर्त की चाय माई दस और तो पकड़ी थी कहना वे चाय में जन्नत वजीर तरीका ना आर जी शिफा जानी ना इलावा ठुले फ्रेंड था में सलोमीना दी बस हाँ उधर सरा दुकाना ना आगे तक सलोम कर बे ठुले फ्रेंड था में सलोमीना वेरकमा तरीका ना शिफा जानी की छे सलोमीना छे अर्थापास नके ख्वान द न रुकवी जका छे सीमे दुलता स्तरगे देरना स्वीजी। अच्छा डेरा मनाना जनत वजीर मैसेज के वाले डेरा डेरा मनाना लो यहाँ से मैसेज के वाले प्रोग्राम से मैसेज बुको आओ दिन लोवा के ना यही कहना चाहिए हाय वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल वेदर शेयर दिस सेंटेंस फॉर ऑल ऑनर। अच्छा पीपल विल किल योर फीलिंग देन से Why are you so change? मैं सही दा इंशारा खटक फ्रॉम बाजूर बाजूर शाह ढेर मनना थैंक यू सो मच मैसेज के वाले ढेर ढेर मनना। थैंक यू सो मच मैसेज के वाले ढेर ढेर मनना जी। नेक्स्ट शाह फैसल फ्रॉम बनगोल बरान खो नव शो ओ मौसम शो दाई बनो माजीगर वाला सलोमीना वालेकुम अस्सलाम डेरा डेरा मनेना थैंक यू सो मच मैसेज के वाले डेरा मनेना शाह फैसल बनो ना मैसेज कराए डेरा डेरा मनेना।

ऑस्ट्रेलिया आज आयसीसी वेमेन्स टी20 वर्ल्ड कप गटले दे इंग्लैंड तय वो विकटोसर शिकस्त वर्कड़े दे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड त शिकस्त वर्क उलुसरा वंजल आईसीसी वेमेन्स टी20 वर्ल्ड कप गटले दे द आईसीसी वेमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की ऑस्ट्रेलिया द टॉस गटलो न बाद फील्डिंग कवलो फैसला करेवा इंग्लैंड वेमेन टीम अवल बैटिंग कवलुसरा मुकर्रा ओवर्स के यूसल 500 रन जोड़ कड़ियो द ऑस्ट्रेलिया वेमेन्स टीम फाइनल मैच के इंग्लैंड तो वो विकेटों से शिकस्त वर कड़े दे पवम जले आईसीसी वेमेन्स आलमी टाइटल पनम कड़े दे वॉलीबॉल फीफा वन फुटबॉल वर्ल्ड कप के ब्राजील ता घट शिकस्त मिलो शविदे द ब्राजील मैनाज लुबगाड़ी नेमार द रिटायरमेंट हस्तलो ऐलान कड़े दे नॉर्वे द कामयाबी न बाद क्वार्टर फाइनल के जय जोड़ कड़े दे फीफा वन फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मैच के नॉर्वे ब्राजील त शिकस्त वर कड़े दे नेमार द रिटायरमेंट हस्तलो ऐलान कड़े दे फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मैच के नॉर्वे पिंजर जिला आलमी चैंपियन ब्राजील त शिकस्त वर कोलोसरा इवेंट न बाहर कर दे क्वार्टर फाइनल तय क्वालिफाई कर दा उस सौरूद मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तरमाहत रुसलविश कंटो पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के बरान शविदी जिन अलकों के पासमान खाल खाल वरियत मौसमियात महकमे लखवाबिली शविदी चेरातुलन को सलिश कंटो पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश जिन अलकों के द बरान वरे दो इम्कान दे अवली जिन अलकों की पासमान खाल खाल वरियवी दो मौसमियात महकमे तरमाहा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के नंजियात नजियात दर्जा हरत नहादेश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम पगिश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर शव्य उपहवा की दिन मई तनासुब वीसद उदाह हुआ रफ्तार 5 किलोमीटर यू घंटा

कडकडी शविदीप अवले तिसरा करकल की मारवत बनू औ टांग खोश असी मुकीबान वर सभा सहर तियार लस मिनट दपास पिंज बजे सिरवही औ महामत विश मिनट दपास व बजे बप्रेवजी दौद रेडियो अमानट सी अशार्य चार नेटवर्क हम खबरों दनोर हम खबरों वृद्धलु दपार रेडियो अमानट सी अशार्य चार नेटवर्क सरउसई उस्त न्यूज टीम सरा मातरा कई जजत दलुला पामान

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: जाने तमन्ना जाने
2: जहां मिले आपको तफरी,
3: जहां मिले आपको मालूमात
2: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: द करक पर तारीख की और मयारी इलाज लपारा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब नास्तवी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के देश काला पूरे तजर्बा लरी और तीसरा करक के हम देश पक कालाना कारकवी। द डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पनिग्रने की द मुख्तलिफ बीमारियानो इलाज की गई, लका असाबी कमजोरी, असाबी दर्दुना, मुख्तलिफ किस्म एलर्जी, द बदन पारसोब, द सरमनी बीमारियाने, बेवख्ता विश्तान स्पेने दल, विश्तान गुर्जे दल, द नरीना और जनाना, द बे औलादे बीमारियाने और द जनाना और रसूले, द ट्यूबोनो बांदेश, द मशुमानो जहनी कमजोरी, द जिगर, द हराबेदो पवजा, द बारातल बदहज, द कुलमो स्वजेदल, द कुलमो टीबी, खूनी औबादी बवासीर, पेचस प्रास्टेट, द त्रिखी कानी, द त्रिखी सोजश, द त्रिखी परसोब, द गुर्दो कानी, द गुर्दो सोजश, द गुर्दो खराबेदल, दखपो तले स्वजेदल, दखपो परसोब और दखपो दर्दुना, खलो उचेदल, द मैदे स्वजेदल, द मैदे गैस और वर्सरा वर्सरा यूरिक एसिड और द बदन द दर्दुनो सरासरा, द जुड़ुनो द दर्दुनो इलाज की। द मशरानो और बेवसा खल को दपारा खसूसी रोयत हम डॉक्टर सिब वर्कवी। दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक पताई तबलीगी मरकज करक नजदे खुशाल हान हटेक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर तमहमख रबते नंबर ये दे 0301214113 यानी 0331 12 12 413।

मैं हूँ असमन नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहत मंद और चमक

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखाना पशा पर के हम इसमा वॉशिंग पाउडर हो खस्ते थी
0: इसमा वॉशिंग पाउडर मड़ाई मिल जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वॉशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की दस रंगे सारा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मोता कुर्श कड़ा ले हो चे कराना में कुर्ता इसमा वॉशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी और स्टोल कुर वाला नकवासोल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी जे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार किसे देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर से अपसार उधर ता मिला भी जी।

ये है रेडियो अमन, रेडियो अमन आपके दिल की आवाज, दिल की आवाज। ये है रेडियो अमन, रेडियो अमन आपके दिल की आवाज, दिल की आवाज।

आखिर जी वेलकम बैक यूजली भी आप प्रोग्राम के तो से उरवा यार जे शाहिद खान और खबर दी दजड़ा यानी प्रोग्राम दजड़ा खबर दाई जी तो से सरंगे दजड़ा खबर रो रही का ना रो सर शामिल हुई का ने रो सर शामिल हुई सदारो तो शाही छे तो से वेरो सर शामिल हुई का ना

0: ये है रेडियो अमन,
1: रेडियो अमन
0: आपके दिल की आवाज,
1: दिल की आवाज।
0: ये है रेडियो अमन,
1: रेडियो अमन
0: आपके दिल की आवाज।